सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, और बहुत सारी चीजा जो प्यारिया लगदियां स्वादलियां लगदियां, कहिंदे मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हों का रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया। भोगं त रोगं, शरीर ने ही भोगां की मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं। भोगं त रोगं, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशिज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कुछ सफला करता है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करता हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हन, कहिंदे हन जे सौ वरिया मिठा खाए, कहिंदे हन

जितने भी शरीर वे रस हैं उतने ही दुख लगते हैं। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच गृहस्थियों खास करके गृहस्थियों यह समझाया है कि जे तुसी गृहस्थी हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी गृहस्थी हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां गृहस्थी लोग हां, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अपने आप में आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है, असी गृहस्थी हाँ। हुण गुरु साहब गृहस्थी किसनू कहिंदे हन ये नहीं असी सुनिया, यह नहीं असी सुने, असी सिर्फ इन्ना ही सुने है कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ धर्म नू बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुने ठीक है ना कि गुरु नानक साहब महाराज ने गृहस्थ धर्म नू प्रवान किया, पर किस किस्म दे गृहस्थ धर्म नू प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, इस नू मनना भी बड़ा मुश्किल है, तो सानू शायद किसी ने दसिया भी ना होगा। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए गृहस्थी जे तू सोचे कि गृहस्थी होने के नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू गृहस्थी है इस करके यू आर अलाउड, वह कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे हन

0: ऐ है गृहस्थी। इसके अर्थ सुनो,
1: सो गृही जो निग्रह करे,
0: कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करने का अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हें इंद्रिया के रसा का गुलाम न रहे, क्योंकि जो इंद्रिया के रसा का ही गुलाम रह गया वह शरीर के ही तल से रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगह इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगह इवॉल्व नहीं होया उसनों द्वारा फिर बॉडी के विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण के विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, द्वारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही ओ गृहस्थी है, जेड़ा गृहस्थी हुंदियां होया गृहस्थ विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इना नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नू घटावे, अपनी नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनी नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करें। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे, बहुत ब्यूटीफुल एलिगेंट पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनो ही, अपने बिल्स पूरे करनो ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करी। कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओहदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जब तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओहदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸਨੂੰ।

जब उस तर्क करा करतार परजा दर्द तब दे अपार जब आकर कथो कबू तुम मैं मिलत दे तर समू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत दरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार जलम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूढ़।

तुमरा लखान जाए पसारा कहबत सिजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंड जजे रज से जकीनी उत्पुष खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संकरे कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आज गात स्वरूप स्वयंपव अवृच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख त है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल फास्ते तय उबार जिन्नर नाम तहारो कहा दर्द दुष्ट दोखते।

तू सतगुरु चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरों तुर आद जुगाद अनाद

0: खालसा जी, आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

cars coming out through the lot of the circle. Mark the city with our stable. लाल देने वाले ने बख्शिश की थी मजानिया ए अमर वस्तु पर बड़ी हैरानी है इस पे नैन वाला ही कोई

बदल कर जाए। आखिरकार कुत्ता खोल अगर भी पहुंचे नमस्कार की भी मथा टेकिया जो सिर चुकिया की बकिया भगवान ही खड़ोते सना खुद नहीं रहे कुत्ते अंदर भी साई पर पहला अपने अंदर भगवान जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो जो पावे पांडे भी चुनस्त सारी जी अंदर बुराई है तो अभी बुरा करा जी अंदर चंगियाई है तो चंगियाई दुनिया तो यह गुरमुख की अवस्था है। दुखिए वेख के हेल्पर बन जाए सुखिए वेख के वाहगुरु का शुक्र पूछिए मरदाने जी उदास क्यों हो मरदाने ने सारी मिथ्या दी मालिक ने दात दिखती है कोई लैंड वाला नहीं मिलता ये किसे को दिखानी थी मरदाने ने क्या दिखाई है जेनू अरैन हलवाई इन्हें क्या नहीं ये वस्तु अरैणा से हलवाइया के लैंड वाली नहीं अच्छा फिर इन कौन लवेगा इन्हें क्या फलां बाजार में चले जाओ उसे बड़ी सुंदर सजी हुई दुकान दुकान के अंदर शीशे के चौकड़िया के अंदर योजना में लाल लाल गीतिया कई पैया तकिया हैं मेनु आस है कि वो एदा मुल पाए अच्छा उस दुकान का मालिक कौन है इन्हें क्या सारसराय चौरी सच मरदाना पुछदा पुछांदा सारसराय जौहरी की दुकान अज पहुंच मरदाना किसी ने दुकान से चढ़िया बड़ी सजी दुकान सी कबीर विछे हैं अतरा दिया खजबूआ अंदर आ रही एक पास चेर लगे हैं कुर्सियां लगिया मरदाना जिसने पहुंचया तो सारसराय ने तकिया कोई आया उठया बड़े अदब नाल हाथ जोड़ के किया आओ जी आया बैठ सोनी कुर्सी के मरदाने ने बिठाया मरदाने ने सुख का सा लिया कह लगा मना लेना देना तो एक पासे रहा पर मना बोलिया बड़ा मिठा है खुश नहीं है मिठा बोलना भी इजाजत है मिठा बोलना भी इंसानियत है इंसान का कर्म है मिठा बोल और तो भावे कोई बोले चाहे ना बोले पर भाई तन गुरु नानक का सिख कदे ना कौना बोले प्यारे तुहाडा गुरु इतना मिठा है जे सैर वर्गे रिखे ने दर्शन कर ले वो भी अमृत हो गया उस वेले नहीं अज भी अमृत अज भी वो अमृत है अज भी मिठा है गुरु तुहाडे दा मिठा जिस गुरु के दर्शन कर रहे हो बाणी पढ़ते हो कीर्तन सुन रहे हो मन के अंदर मिठा नफरत का जीवन सब तो घटिया जीवन नुक्ता जीवी का जीवन संपूर्ण नहीं नुक्ता जीवी क्यों करिए भाई ये करनी एक वही बाबा जी पास संगत आई बाबा जी कह लगे निंदा न करया करो पर बाबा नंद सिंह जी महाराज जिन्होंने महापुरुषा ने श्री गुरु ग्रंथ साहब को साक्षात गुरना विचार के असं तो रोज पढ़ते हैं ना पर गुरुद्वारा जी से बाबा जी ने मने जिन्होंने मने उन्होंने वास्ते साक्षात बाबा जी कह लगे निंदा न करया करो पाई एक प्रेमी उठ के खड़ा हो गया बाबा जी असी कलयुगी जीव असी तो निंदा भी करते हैं उपज भी करते बाबा जी कह लगे क्यों इन्हें क्या महाराज असि स्वार्थी बंदे हैं जिथों साडा मतलब हल हो जाए स्वार्थ पूरा हो जाए उनकी परिवार के कोल बंदे ये बड़ा उपकारी है बड़ा दानी है बड़ा महापुरुष है अंदर का मन भावे जानता हो दूस करैक्टर एदा करैक्टर चंगा नहीं पर इस वास्ते चंगा कह लग जाने साडा मतलब पूरा हो दूजे पासे असी उत्ते चिकड़ सुटन लग जाने और बुरा कह लग जाने जेदे को साडा मतलब पूरा ना अंदर ना मन जानता हो ये नेक इंसान ए कोई गलती नहीं पर इस वास्ते क्योंकि साडा मतलब हल नहीं होया इस वास्ते निंदा कर क्योंकि दुनिया दो रंगी है दुनिया दो रंग हजूर एक दिन लेते हुए सन किराने बांह की हुई मरदाने नाल मिठे मिठे वजन पे करते सन।
और वो जिम्मेदार लड़कियां कामिया रोटी देने वास्ते जा रही सन। एक ने कहा दूजी दूनी भेने वेख घर बार छड़िया है साल बनिया है ते अजे भी सराने पाल। हजूर ने अपने सराने बांह की हुई थी, किसी ने बीबी ने वचन किया तो सरदुरा ने वो जी बांह थी अडोल कर दी। दूजी कह लगी वेख नी भेने तेरी गल का कितना गुस्सा किया। अजूर मुस्कुरा पे कह लगे वो मरदानिया दुनिया किसे पास नहीं छ आखो श्री भाई किसी पास दुनिया। बाबा जी कह रहे सन मकान भी नहीं एक होती है पर दुनिया दिया दो नहीं आखो दिया दो नहीं जे चिट्टे कपड़े पा लो ये तो बड़ी आकड़ होगी जे मेरे पा लो कहने भुखा मरन लग गए हैं दो नहीं जो दो नहीं तो प्यारी साध संगत उस प्रेमी ने किया बाबा जी जिन्हें को मतलब हल हो जाए ओदिया तरीफा जिन्हें को सवाल पूरा ना आवे चंगी विदा कर साधा तो सुभाव बने। बाबा जी महाराज कह लगे चंगा फिर उत्सुत भी करया करो ते निंदा भी करया करो। बाबा जी एक ही बच उत्सुत भी करिए निंदा। बाबा जी कह लगे थोड़ा सुभाव बन गया है ना करेगा सर। सारी संगत हैरान होगी नहीं बनवाज कोई सोची पाओ। बाबा जी कह लगे ये थोड़ा सुभाव बन गया उसत निंदा करना जे निंदा करनी है तो अपनी करो सुभाव बने जे निंदा करनी है अपनी करो सब अवगुण में गुरमी ये गुरमुख लिखा। कबीर जी गुरमुख सन कहते कबीर हम सब से बुरे अति बुरे होके चंगे बनने की कोशिश कर पर चंगे बनता यह सब तो पहला निशाना है जिन्हें डालियां फल लगते हैं वो छुपी हैं। कबीर जी ने कहा कबीर हम सब से बुरे हम तक भरो सब कोए जिन ऐसा कर हो दिया मीत हमारा। बाबा जी कहने लगे अपनी निंदा करे कर अपने कर्मों की निंदा करे कर ते जी उसत करनी है तो मेरे धन गुरु नानक जी साहब भी उसत करें करवाए करें पढ़िए ना उस्तत कर कर जीवा जी मैं उस्तत कर कर जी

जुगाड़ सदसन का रखा उसत कर जीवा नानक नाम महारस लिखा अंदिन मंत्र पुस्तक कराया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहिगुरु ने पुत्र की दात दिती है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शिया है आखिर जी गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो ये गुरुमुखता है ये गुरुमुख दी चाहिए तो कह रहे सात संगत यह वचन ना बोलिए जिसे किसी का मन दुख है हरी जी ने कहा सबना मन मालिक ठाहण मूल मचा गवा जे तो प्रिया जी सिके तो न खाई गुरु नानक दास जी जिदा गुरु इतना मिठा हो कदे नहीं तोड़ना प्यार भरे बचन चंगे वचन करो भाई चंगयाई दुनिया बदलेगी सिखती है ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम की।

निर्मोल कीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदाने के ये संबोध वस्तु से ना मुल बन इस वस्तु का मुल बन पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदाने उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदाने ये की है महाराज एक सहित रुपये भी है अजू कह लगे आपा की करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज आपू बना के मरदाने ने कहा सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तो तुम कह दो वापस अजूर कह लगे मरदाने आपा इन किसे चुकी फिरा मरदाने ने कहा महाराज तुम थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बड़े कीर्तन सुनावे हम तो कदे नहीं खवागा महाराज भुख लगी अजूर कह लगे जी मरदाने अभी मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे बंदे कछू न बंदे पंछी ते दरवेश और जिन्हों तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बांधते जवे देवता खाए गोविंद ताके पीछे जिने मत भूखे दे जाए एक सौ रुपये की छैली वापस दिखती सात राज होर प्यार आया नौकर मुंह लाया धरका कोई रबी दूर आया है और ही सौ सुन के मन धरया है प्रसादे का थाल परोसना है मिठाई भी रखना है दुध का गड़वा भी भरना है कितना रुमाल पा के पूजा दे मैं दुकान बंद करके आऊंगा आप उस दाते दे दर्शन करना अगर कब पहुंच गया पहला दिन के पदार्था का थाल रखिया मत्था टेकिया हजूर ने अभी उसी ना टकिया सिर को नजर करम सिरकार नानक नदरी अगर कई झोलियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते इधरों सासराए भी आए अजूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया उतारने वाले दुनिया दाता देने वाले मेरी झोली की है अजूर कह लगे सासराए की चाहना है पातशाह दुनिया भी दाता सारी है हीरे दान पन्ने पुखराए धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुशी नहीं बनी मन नहीं रही मन संतुष्ट नहीं है मन तो संतुष्टि नहीं हजूर कह लगे हां सारसराय मन का भोजन हो रहा है मन ही नाल नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब नवाज फिर करो कृपा अजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि भर अजूर कह लगे सारसराय तू देरी नाल आया है जेड़ी दात सी ना वो तेरा नौकर ले महाराज फिर मैं अजूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर दे चरना पे है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लेके होवे तो नहीं पर सारसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल कुछ है अंदर शरदा से प्यार सी रो पिया हरी परिवार यह तो मेरा बच्चा है पर जे तुम आखो तो मैं थोड़े कुत्तिया ने पैर चमार तो दास भक्त जेदे नाल मेरे मन की सुख दूर हो हजूर ने बख्शिश पीती सासराय जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुम भी मन करके नेड़े हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सासराय के सिर से फिर प्रयास रखिया सारसराय जब सतनाम कर हुकुम मस्तक हथ हरिचो मार करियां बरियाइया सह सुखे नाम नाम दीदार जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ा है त्यों त्यों मन सुखी हो जाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोरे तोरे पीवा मेरा सतगुरु अज सारसराय दोलियों कर दिखाई मेरे धन गुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्व माशी का दिन आखो स्थिति भरे सारसराय दोलियां भरिया गई उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अनेरे को दूर करती जाएगी गुरु की मेहर जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी आप धन
सर्वत्र माई साई जो अमृत ले रही है।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ। अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा कराण जिथे जाना चाहते हैं। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे झूठे कौले मांजदे पे, अज ये गुण लै जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले मांजन। बाबा ही कौले मांजदे पे, कोला हाथ च नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला, नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला। इन्नी क लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी, जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही ए सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे, ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा। कहंदे दीप सिंह कोले मांजदा पे, बाबा जी तुहाडी कृपा ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा ना, ते तन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे अज दीप सिंह एक गल दस।

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहण वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी

कला नाम करके खालसा ने जिन्हें आत्म रस नु जान लिया ओहो ही खालसा है। सिर्फ नाम दे नाल खालसा नहीं, आप जिन्हों मर्जी कह देने आओ खालसा जी, कई अपने नाम दे नाल भी

सत्संग मिले सो तरिया, मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया, गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा, कर कर बाबा गावी है बजल ताल मृदंग बाबा।

माधोजी सत्संग मिले सो तरिया, सत्संग मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, साध संगत होए निर्मला, कटिए जम की फांस। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया, कहे कबीर सुनो रे संतो।

0: संगत कैसी जानी है।
1: केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो जी संगत।
0: सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है।
1: ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने ओ साध संगत।
0: साध संगत मिल होए तराबा,
1: ते संगत करम दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी।
0: बिसर गई सब तात पराई।
1: इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन, ईरखा, किसे नु वेख के जलना। तात पराई नहीं छड़दा, पर सैब आखदे ने जीव जदो संगत विच आ जांदा है ना सब कुछ छड़ जांदा।
0: बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई।
1: कितना संगत विच आउण दा लाभ है। जब संगत विच आउंदा है तात पराई भुल जांदी। इत्थे ही बस नहीं, ना को

फिर गुरु दसदा है जीव तू संगत विच जा, जो संगत विच जाएगा सुख ही सुख मिलेगा, दुख तेरे नेड़े नहीं आवेगा, संगत करन दा यही ते लाभ है। ते साहब आखदे ने मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरे, उतर गए ओदा उधार हो गया, जेड़ा संगत दे नाल आ मिले है ते जेड़ा संगत नालों टुट गया वह काला हो गया, जे कोई संगत नालों निखड़ गए, संगत नालों संबंध टुट गए, गुरु नालों वखरा हो गए, गुरु तो बेमुख हो गए, ते जेड़ा गुरु तो बेमुख हो जाए वह काला हो जाए। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया, पब्बर तू हरियावला। पब्बर कहिंदे ने सरोवर, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन। कितना खूबसूरत है, तेरे अंदर सोने दे रंग वर्गे कमल दे फुल खिले हुए ने, किन्ना चंगा ते सोना सुंडना लग रही है। इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि संबंध सोमी नाल संबंध जुड़िया हुए। अज साहब फिर आए ने वेखदे ने यह सरोवर इतना खूबसूरत इतना अच्छा, ना इस दे विच अज फुल ने ना वो पानी ना वो सुंदरताएं, काला हो गए। कै दोखड़े सड़ो काली होई आ जोहरी, पुछ कीती साहबा ने ओए केड़े दुख दे नाल सड़ गए, तेरी देहरी काली क्यों हो गई है, की कारण बने? सरोवर जवाब देंदा है साहब जी मेरा संबंध उस सोमे चश्मे नाल जुड़े है, अजो मेरा संबंध टुट गए, मैं उस तो जुदा हो गया, इसलिए मेरी जोहरी काली हो गई, मैं सड़के काला स्याह हो गया क्योंकि संबंध टुट गए। इसी तरह जिन्हें अपना संबंध गुरु दे नाल जोड़ लिया है, संगत दे नाल जोड़ लिया है, संगत विच आ गया है, वह हरियावल है, उस सरोवर तीर तरह खूबसूरत है, तो जिदा संबंध टुट गया है काला स्याह हो जाता है। असी संबंध तोड़ना नहीं, संबंध जोड़ना है, सगो टुटिया नू भी इस दर ते लियाउणा है, आखना है भाई संगत विच आ, जिहड़ा संगत विच आ गया उस तर गया, आओ प्यार सत सारे मिल

आद अनाद आजाद अपेक अवैक जप्यो तिन्ही कुलसारी, राग ना रूप ना रेख ना।